तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता, भुला नहीं।

से आधा रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन

मल्ले वाले जग रहे ले, मल्ले वाले जग रहे ले, जब जावेद भाई सो रहे ले, जावेद भाई सो रहे ले।

अर्ज किया है। जावेद भाई सो रेले, जावेद भाई सो रेले, अच्छे खासे सो रेले।

अर्ज किया है। जावेद भाई सो रेले, जावेद भाई सो रेले, अच्छे खासे सो रेले। मोहल्ले वाले जग रेले, मोहल्ले वाले जग रेले, जब जावेद भाई सो रेले, जावेद भाई सो रेले, सो रेले।

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है। इतना